0: जरा कोई मॉडल बुरा ना लगता है,
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: This is Talk 100.3।

पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था